सुपरहिट गाने इस चैनल पर ही है सुनहरे गाने और कुछ यादें। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कीजिए।

0: नमस्ते लिसनर्स, मैं हूँ आशा कोमल, आपके दोस्त और शो की होस्ट। आप सभी का स्वागत करती हूँ। आप सुन रहे हैं आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो। जैसे कि आप सबको पता है कि आचार्य 90 FM के स्टूडियो से हम लोग बहुत सारे लोगों को मिलते हैं, उनके साथ बात करते हैं, डॉक्टर हो या फिर कोई सेलिब्रिटी हो, बहुत सारी बातें तो होती रहती है। लेकिन हमारा आज का सेगमेंट एक टोटली डिफरेंट रहेगा और सबको बहुत ज्यादा अच्छा भी लगेगा, क्योंकि आज मेरे साथ, मतलब मैं नाम क्या दूं वो तो मुझे भी नहीं समझ में आ रहा है, कंटेंट क्रिएटर बोलो, इन्फ्लुएंसर्स बोलो या फिर कुछ और। सो जैसे कि हम सब इंस्टाग्राम पे बहुत ज्यादा जो रील्स है वो देखते रहते, तो तभी हमें प्राउड चेंबुरकर हो, प्राउड थानेकर हो, मुंबई मेरी जान हो, मुंबई शहर घाटकों पर बस, ये जो पेजेस के जो रील्स देखने मिलते हैं वो बहुत ज्यादा लोग जो है उन्हें पसंद करते हैं। तो ये पेजेस और ये कम्युनिटी पेजेस जो रन कर रहे हैं वो हेमंत केसरी आज हमारे साथ आचार्य 90 FM के स्टूडियो में जुड़े हुए हैं। सो बहुत बहुत स्वागत है हेमंत आपका।
1: थैंक यू सो मच आचार्य 90 FM मुझे इनवाइट करने के लिए। एंड अगर आपको बताऊं मैं, तो मैं भी इसी कॉलेज का एक्सटूडेंट रह चुका हूं, जो कि बहुत अच्छी बात है। मैं 2012 के बाद स्टेप इन कर रहा हूँ कॉलेज में, एंड द कॉलेज इज कम्प्लीटली चेंज्ड।
0: सो क्या बात है, मैं ऐसे कह सकती हूँ कि एलुमिना मीट्स एलुमिना। सो स्टार्ट करते हैं। सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम जो एक क्रेज बन चुका है, हम लोग देख रहे हैं कि लोग पागलों की तरह लोग स्क्रॉल कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं, लोगों को चीजें जो है वो एक्सप्लोर कर रहे हैं लोग। तो हेमंत, आपको ऐसा कब लगा कि मुझे भी कुछ ऐसी चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए, मुझे मीडिया में आना चाहिए, मुझे ये सब जो बातें हैं वो लोगों तक पहुंचानी है?
1: ये मेरे अंदर का जो एक जो कीड़ा है मीडिया का, मुझे तब पड़ा था जब मैं आई वाज इन 10th स्टैंडर्ड एंड आई यूज्ड टू मिमिक्री ऑफ माय फ्रेंड्स एंड फैमिली। सो फिर वो होते होते फिर 10th पास होगी, फिर आई केम टू आचार्य कॉलेज इन देयर। देन लेटर ऑन देयर यूज्ड टू बी अ सर कॉल्ड एज मिस्टर शर्मा, आई डोंट रिमेम्बर हिज फर्स्ट नेम, एंड ही यूज्ड टू टीच अस ओसी। तो उन्होंने बोला था कि तेरे लिए ना मीडिया में बहुत स्कोप है, सो व्हाई डोंट यू बिकम अ न्यूज एंकर। तो न्यूज एंकर बनने के चक्कर में आई वांटेड टू गो फॉर मास मीडिया, बट लेटर ऑन ड्यू टू समथिंग आई परस्यूड माय बीकॉम फ्रॉम ऑफ कोर्स फ्रॉम द सेम कॉलेज। बट इन 2011 समथिंग हैपेंड वेयर आई केम इन टच विद दिस पेज कॉल्ड RVCJ, रजनीकांत सीआरडी जोक्स। सो वो पेज देखकर मैं काफी इम्प्रेस था कि मतलब फेसबुक यूज्ड टू बी सो कूल थिंग।

0: डॉक्टर सेगमेंट मध्ये आपली रजा घेते. पुन्हा भेटूया पुढील हॅलो डॉक्टर सेगमेंट मध्ये. तोवर नमस्कार.
1: कान में लगती है ना ये आवाज, पता है कमाल की बात क्या है, ये चौक को ऊपर से हल्का सा तोड़ दो तो ये चू चू नहीं करती. एक छोटा सा टुकड़ा, एक छोटा सा चेंज, यही फर्क होता है क्यों में और क्यों नहीं में.

राजश्री से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब कीजिए राजश्री से जुड़े रहने के लिए।

0: Hello friends, welcome to Acharya 90FM, your old radio. Myself, Ajay Tejaswini, and we have in our celebrity show today, one more Ajay with us. Hi!
1: Hello!
2: That's so sweet. She's very sweet.
0: Ajay Nikon Mukherjee is with us, and actually she has come for our Pixel event, which is we are celebrating today. That is Pixel 2025 from NG Acharya and DK Marathi College. And she'll be conducting, I think, open mic. She'll be doing that open mic judging. She has been called for that. And so I thought to take this opportunity, to grab the opportunity and to have a short interview with her. So she belongs to same field. So, and she's so pretty and so sweet today looking. So would like to interact with her and to know about this media and radio jockey industry.
2: Yes, absolutely.
0: So welcome, Nikon.
2: Thank you so much for having me here. I'm feeling privileged. I'm feeling very happy. I'm feeling very, honored that I'm here sitting with you. You are way more prettier than me and way more graceful than me. मैं तो पता नहीं कैसी रेडियो जॉकी थी. मैं तो ऐसी वाली थी. She is so graceful with so much of dignity and, that grace.
0: Thank you. So how you find coming to a college since you have come since early morning, 9 o'clock?
2: See, I was that
0: sharp.
2: I'm always on time. People, even on sets.
0: Yeah.
2: I was a radio jockey. 6 years back, I was a radio jockey. Now I am not because, of course,
0: yeah, people she got better. Busy,
2: better people are doing the job. Why me? So yeah. So
0: The college मेरा, premises,
2: हाँ, yes, हाँ. So मेरा जल्दी आने का रीजन ये है यहाँ पे कि मैं सुबह उठकर इतनी एक्साइटेड थी कि मैं कॉलेज जा रही हूँ बिकॉज इन माई रियल लाइफ आई हैव नॉट बीन टू कॉलेज. मैंने ग्रेजुएशन नहीं करी है.
0: ओके.
2: सो आई हैव डन माई डिप्लोमा एंड एवरीथिंग फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी बट आई हैव नॉट डन ग्रेजुएशन. आई वाज सो एक्साइटेड. आई ऑलवेज क्रेव फॉर दैट कॉलेज थिंग, यू नो. सो टूडे कमिंग बैक टू कॉलेज इज वेरी मोर लाइक वेरी मच एक्साइटिंग. इवन मतलब ये बच्चे भी इतने एक्साइटेड नहीं होंगे जितनी मैं इस वक्त हूँ. सो या दैट्स व्हाट.
0: तो हमेशा मतलब हमें तो कॉलेज के दिन याद आते हैं जब वी कम टू कॉलेज प्रीमाइसेस एंड आवर कैंपस इज सो ह्यूज. लाइक वी हैव एम्फीथिएटर, वी हैव जिमखाना, वी हैव बुक्स लाइब्रेरी विद 10,000 बुक्स. यू मस्ट विजिट द लाइब्रेरी ऑल्सो. एंड वी हैव वेरियस फैकल्टीज लाइक मास मीडिया इज वन ऑफ देम बट वी हैव आर्ट साइंस कॉमर्स कॉलेज, वी हैव आर्किटेक्चर कॉलेज, सो मेनी थिंग्स. एंड इन दैट एंड वी The feather in the cap is Acharya 90FM,
2: Let's go, So, अभी तक मैंने देखा नहीं है. So, yet to see the whole college and I would love to see the whole college and super excited.
0: Yeah. Yes. So, first of all, since you were been an RJ for Radio Mirchi, so how was that experience? We'll start with that.
2: You should ask them the experience because I was not there for a long time. Okay. But the experiences I had was more of learning because I was very new. I was just 19 years old when I joined Radio Mirchi. I was the youngest jock they had.
0: Okay.
2: And they trusted me and somehow kuch to maine achha hi kara that they still are in touch with me.
0: Mm-hmm.
2: And it was a blissful experience. Having said that, I always wanted to be a radio jockey. Okay. मैं radio jockey 4th standard से बनना चाहती थी. So हमारे दिल्ली में एक RJ RJ नावेद, he's very famous. He was also in Radio Mirchi. So for me, he's my god.
0: Inspiration.
2: My god. मतलब मैं पूछती हूँ उन्हें, मेरा इतना ज्यादा उनसे लगाव है. मैं रोज सुबह उठ के मैं सिर्फ RJ नावेद को कान में इयरफोन्स लगा के सुनती थी. जैसे ही गाना आता था आई यूज टू स्विच. सो आई हैव बीन दैट काइंड ऑफ एन ऑडियंस टू रेडियो. मैं हमेशा गाने स्विच करके जॉकीज को सुनती थी. आई हैव बीन लाइक दैट एंड इट हैज बीन सच एन इंस्पिरेशनल थिंग फॉर मी. आई हैव दिस रेडियो टैटू ऑल्सो इन माई हैंड. मैं पागल थी रेडियो के पीछे. एंड व्हेन आई फाइनली गॉट अ चांस इन रेडियो मिर्ची वॉज अ लिटरली 4th स्टैंडर्ड निकॉन ड्रीम कमिंग ट्रू काइंड ऑफ अ थिंग. And I couldn't believe for good 24 hours that I got that job.
0: Mm-hmm.
2: I am a part of Radio Mirchi now. They call me RJ Nikon. Yeah. And I was like, first day I cried inside the office.
0: Oh.
2: They were like, why are you crying? I was like, it is very unreal for me. I can't.
0: Whatever you manifested, it came true.
2: It came true. Everything came true.
0: Yeah.
2: Everything in my life. Whatever I manifest. आई विल टेल यू. जैसे जैसे हम सेगमेंट से आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपको समझ आएगा कि मेरी मैनिफेस्टेशन आज तक दिस वॉज ऑल्सो मैनिफेस्टेशन कि किसी दिन मैं इतना बड़ा कुछ करूँ कि कोई मेरा इंटरव्यू ले रहा हूँ. सी टेबल्स हैव टर्न्ड आई एम सिटिंग हियर एंड गेटिंग इंटरव्यू.

0: I come across as a Punjaban a lot. People tell me that I'm Punjabi.
1: Punjabi, yeah. You look Punjabi.
0: Yeah, so people tell me that I'm Punjabi, but always a privilege to known as a Punjabi and as a Bengali. I love Bengalis.
1: How was your Delhi life? Very cool?
0: No. Delhi life has been that teenage life which you have with lots of restrictions, lots of Delhi being Delhi, you know. After that time, my mom had a strict rule. Even me, or I have a 7 year older brother.
1: Oh.
0: So for him also, the rule was same ki 7:30 ke baad ghar se bahar nahi nikalna hai. Because it's dangerous. Somebody will either snatch something from you or do whatever they do. So mere mummy papa ka strict rule tha, matlab 7:30, matlab if 7:35 used to be the kaan ke niche bajte the hamare, aisa wala tha strictness.
1: So you belong to a conservative family?
0: No, not really. I come from a Bengali family. Conservative was never that thing. They were just scared about the fact we live in Delhi, because if this was a conservative case, toh mujhe kabhi bhi Bombay aane ka permission nahi milta. Aaj main yahan pe 3 baje bhi bahar jaati hu, toh mujhe koi problem nahi hai. Mere mummy papa ko pata hai. I am dating someone from past 7 years. They love that person.
1: Oh wow.
0: So mere ghar wale bahut, matlab mere ghar walon ne mujhe do cheeze hamesha batayi hai. First is, जब तक तुम्हें शादी नहीं करनी हो तब तक मत करना, देयर इज नो प्रेशर ऑन यू. और नहीं भी करनी है तो भी चलेगा, यू विल बी हैप्पी. वी नो यू. एंड सेकेंड थिंग इज, कोई भी बात हो हमें किसी और से पता चले, उससे पहले हमें आके बता दो, जिससे कि किसी और के मुंह से सुन के हमें बुरा या शॉकिंग ना लगे. सो ऑलवेज शेयर विद अस. सो आई हैव बीन ग्रोन अप इन दैट काइंड ऑफ यू नो अपब्रिंगिंग, जहां पे मुझे अपने मम्मी पापा से आज तक कोई बात बोलने में डर ही नहीं लगा. लाइक
1: They were like besties.
0: I go random, I crib in front of them. मैं उनको कॉल करी, आपको अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, दुनिया ऐसी ही होती है. हमारे मम्मी पापा ने बस एक लाला लैंड बना के रखा था. सो आई हैव बीन लाइक दैट.
1: अच्छा, सो हाउ वॉज द जर्नी कमिंग टू मुंबई? सो हाउ यू थॉट की आई हैव टू गो फॉर मेकिंग करियर इन मुंबई?
0: There was no education, first of all. Sitting inside a college. Have to say this, कि मेरा पढ़ाई में कभी मन नहीं लगा. मैंने डिप्लोमा किया बिकॉज आई ऑलवेज वॉन्टेड टू बी अ रेडियो जॉकी, एंड डिप्लोमा इज अ शॉर्टर वे ऑफ गेटिंग इन टू समथिंग, कि कम पढ़ाई करनी पड़ेगी. पर वो मैंने मन लगा के करी, मतलब बहुत मन लगा के करी. सो आरजे दिव्या फ्रॉम रेडियो सिटी दिल्ली वॉज माई लेक्चरर देयर. शी वॉज माई प्रोफेसर. शी फाउंड मी देयर. शी वॉज शी इज स्टिल एन एंजल फॉर मी, दैट शी सॉ समथिंग ऑन मी. शी इज लाइक दैट यू कैन डू दिस. आई एम लाइक आई वुड लव टू. तो फिर उन्होंने मुझे वहां से पहले बैंगलोर भेजा. आई वॉज होस्टिंग एन ऑस्ट्रेलियन रेडियो स्टेशन देयर कॉल्ड रेडियो गागा.
1: ओके.
0: एंड वहां पे मेरे शो का नाम था चैटर बॉक्स विद आरजे निकॉन. हैविंग सेड दैट, आपके अभी तक के 7 मिनट बहुत हसीन रहे होंगे. तो वो शो करते करते मुझे ऐसा फील हुआ कि अब मैं काफी कॉन्फिडेंट हो गई हूँ. तो उसके बीच में मैं एक बार बॉम्बे आई, वेयर आई इंटरव्यूड शाहरुख खान फॉर जीरो, सॉरी फैन, 2019 फैन के लिए वी केम. नो जीरो, सॉरी माय बैड, जीरो, वेयर अनुष्का शर्मा एंड कचीना के बोथ वर देयर. सो इट वॉज शाहरुख खान बर्थडे के एक दिन का पहले, 1st November इट वॉज 2019. सो आई केम टू बॉम्बे एंड मन्नत के अंदर उन्होंने इंटरव्यू रखा था.
1: वाओ.
0: सो वी ऑल प्रेस पीपल वर इनसाइड मन्नत एट शाहरुख, दैट बिग ऑफिस विच पीपल शो ना, पीछे अवार्ड्स रखे हैं एवरीथिंग. सो इट वॉज इनसाइड दैट प्लेस. फर्स्ट ऑफ ऑल, मी कमिंग फ्रॉम हंसराज कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी, वहां से शाहरुख खान पास आउट हुए. सो मेरे लिए आई एम मीटिंग माई सीनियर, देन आई एम मीटिंग दी मोस्ट famous actor. Third, I am meeting the heartbeat of every person. You may not like Shahrukh Khan, but you can't hate Shahrukh Khan. वाला situation है हमारे देश में. तो I went there and I honestly I was speechless. एक तो मैं वो उस टाइम पे 2018 में मैं 18 साल की थी, and I'm sitting in front of Shahrukh Khan. My mind was not working. I was glitching back to back. और मुझे ये डर लग रहा था कि जब

0: मेरे हाथ में माइक देंगे तो मैं शायद अड़वा अड़वा करके ना बाहर आ जाऊं, बिकॉज मेरे तो लव्स नहीं निकलने वाले इस आदमी के सामने. सो ईच टाइम द माइक वॉज कमिंग इन फ्रंट ऑफ मी, मैं ना हटा दे रही थी. आई वॉज लाइक नहीं नहीं आप कंटिन्यू कर लो, नहीं नहीं आप कर लो, बिकॉज देयर वर लिटरली 40 पीपल विद मी. तो लाइक टूवर्ड्स द एंड ऑफ दैट इंटरव्यू ही जस्ट लुक्ड एट मी, इज लाइक आपको कोई सवाल नहीं पूछना. सो आई वॉज लाइक नहीं पूछना तो है. अरे पूछो पूछो, क्या नाम है आपका? He started asking me, I was like, मेरा नाम निकोर मुखर्जी है. He's like, अच्छा अच्छा. फिर मुझे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आया.
1: Okay.
0: तो फिर मैंने बोला आपको पता है मैं सेम कॉलेज से हूँ. आई एम फ्रॉम हंसराज कॉलेज ओनली. सो ही वॉज लाइक तू हंसराज से है? अरे तू इतना क्यों घबरा रही है, तू पूछना. एंड दैट बूस्टेड माई कॉन्फिडेंस लाइक एनीथिंग,
1: क्रिएटेड अ बॉन्ड ऑल्सो.
0: यस. और उसके बाद मैंने सवाल पूछने शुरू करे एंड ही वॉज सो फ्रेंडली टूवर्ड्स मी. ही वॉज लाइक तू कितने साल के हो जाएगा? 18. लाइक यू शुड बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ, तू शाहरुख खान के सामने 18 साल में बैठी हुई है. आई एम लाइक ओके आई शुड बी, क्योंकि तब तक मुझे क्लिक नहीं करा था. मुझे बस इतना था कि मुझे परफॉर्मेंस प्रेशर है उस पॉइंट पे. So that's what we said and that's what he's like, tu Hansraj college se hai na? Maine bola yes sir. To bolte hai ki Hansraj college se jo bhi nikalta hai na wo star hi banta hai.
1: Wow. And there you are.
0: We'll see.
1: Okay.
0: I'm like ki aapne keh diya hai ab to nahi ab aa rahi ho hi jayegi. So it was that way. So wow. First experience coming to Bombay was directly inside Mannat.
1: Wow. Great.
0: So the start was आगाज बहुत ही कमाल का था. देन मैं शिफ्ट हुई 2019 में एंड फर्स्ट आई वर्कड विद बालाजी टेलीफिल्म्स एज अ क्रिएटिव. जब तक मेरा इंटरव्यू क्लियर नहीं हो जा रहा था, मिर्ची का कुछ तो करना था, बिकॉज सर्वाइवल बॉम्बे एक्सपेंसिव.
1: यस.
0: सो दैट आई डिड. आफ्टर दैट देन आई गॉट अ कॉल फ्रॉम रेडियो मिर्ची दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर द इंटरव्यू थिंग एंड देन आई पास द इंटरव्यू. गॉट मिर्ची. I just got to know from people that Jeetu Raj had come here.
1: Yeah, yeah,
0: so
1: yeah.
0: Jeetu Raj and I used to co-job.
1: For our third anniversary. Of,
0: oh yeah, I know, I know. Yeah. He told me. So for that thing, सुबह 7 बजे मैं जीतू राज के साथ को जॉक करती थी. तो एक महीने बाद मैंने जीतू राज के पैर और हाथ दोनों पड़े हैं. आई एम लाइक कि मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप जिस लेवल, ही इज एक्सट्रीमली टूवर्ड्स रेडियो. फॉर हिम रेडियो इज समथिंग विच नोबडी कैन इमेजिन. वो आते हैं, एसी पूरा हाई कर देते हैं, दो फूल लेकर आते हैं, सामने अपने कंसोल के रखते हैं, फिर साष्टांग दंडवत प्रणाम सीधा ऐसे करके जमीन पे. फॉर हिम वो जो दुकान खोलता है, जो वो कैसे पूजा करता है. तो फर्स्ट शो उन्हीं का होता है ना, वो ऐसे दुकान खोल के पूजा करते हैं. मैं उतनी ठंड नहीं सह सकती थी एंड दैट एनर्जी विच ही गेट्स एट 7 AM, आई कांट डू इट. नॉट अ मॉर्निंग पर्सन एट ऑल. मैं भी 3 कॉफी पे जिंदा हूँ, इसलिए इतनी लाउड हूँ, वरना मेरा सुबह सुबह आवाज नहीं निकलता है.
1: Chalo, yeah. We'll continue with our gupshup on Aajar 90 FM. We'll take a short break in our celebrity show. We are having a celebrity Nikhor Mukherjee today with us. So we'll keep listening Aajar 90 FM, your own radio.

0: Welcome after the short break. You are listening to Acharya 90 FM, your own radio, and we are listening to Nikon Mukherjee ma'am. Nikon ji, abhi chalte hain, aage badhte hain.
1: Aap ma'am. Main sirf Nikon Mukherjee.
0: Okay.
1: Nikon. You can call me just Nikon also. That's good.
0: Yeah, but yeah,
1: you are
0: honorable guest today.
1: No. So you are honorable ma'am. I am just Nikon.
0: Okay. So after Radio Mirchi, you switch on to Sony Mix Celebrity Chat Show, which was Bollywood Mix.
1: Yes. Yeah.
0: So would like to hear from Sony channel.
1: Oh my God, that. मेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था वो.
0: Okay.
1: मैंने जिंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं टीवी पे आऊंगी.
0: हाँ.
1: और मुझे लोग पहचानेंगे बाय माय फेस.
0: ओके.
1: एंड जिंदगी में कभी नहीं सोचा था नहीं बोलूंगी. क्योंकि अगेन दैट मैनिफेस्टेशन पार्ट. मैंने ना अनोइंगली आई यूज टू थिंक अबाउट मी विनिंग अवार्ड्स फॉर अ फिल्म, फॉर दिस, फॉर दैट. जबकि मेरे कॉन्शियस में नहीं था. मतलब ऐसे, मतलब फालतू में छोटे बच्चे कुछ भी करते रहते हैं ना, तो मैं वैसे करती थी. आई नेवर न्यू दैट इट गॉट मैनिफेस्टेड कि मैं एक टीवी शो में पहुंची जहां पे आई इंटरव्यूड दी बिगेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस इंडस्ट्री, वेदर दैट वॉज रानी मुखर्जी, दैट वॉज अनिल कपूर, दैट वॉज कार्तिक आर्यन, अनन्या पांडे, भूमि पेडनेकर, and so many big actors.
0: Yeah.
1: And the biggest compliments by Rani Mukherjee and Anil Kapoor I got. Rani Mukherjee came to my show. She's like that. She was so impressed with my whole thing because that time I turned 19. ये 2019 की बात है. तो एक 19 साल की लड़की पहला शो कर रही है with that much of confidence and everything. She really liked. And then of course Mukherjee connection. So she just looked at me again. After the whole show happened, whole interview happened, she was leaving. She came back to me, उन्होंने मेरे सर पे हाथ रखा, and she said that, listen, you are Nikon Mukherjee. I'm going to see you on screen soon.
0: Wow. Okay.
1: You're going to succeed. Don't worry about it ever. And it was a shocking thing for me, surprising thing for me, कि how can someone be this sweet? मतलब वो किस level पे? She's the Rani Mukherjee. वो मेरे पास घूम के आके मुझे कॉम्प्लीमेंट दे रही है. दैट्स अ वेरी बिग डील. उधर ही अनिल कपूर आए. अनिल कपूर इज एज यूजुअल ब्यूटिफुल. ही जस्ट एंटर्ड. ही इज लाइक ओ हेलो. आई एम लाइक हाय सर, आई एम निकॉन. ब्यूटिफुल यू आर. आई एम लाइक थैंक यू सर, थैंक यू सो मच, मीन्स अ लॉट. ही स्टार्टेड कॉलिंग मी निकोल किडमैन. एंड निकोल किडमैन इज वन ऑफ द मोस्ट प्रीटीएस्ट एक्ट्रेसेस दिस वर्ल्ड हैज. He started calling me Nicole Kidman. I am not like 1% of Nicole Kidman. It's just that he's like that, you know, you are actually very, very beautiful. So that boosted me again because, you know, I always had that self-doubt. बचपन में जब प्यूबर्टी हिट कर रही है तुम्हें धीरे धीरे, तो तुम्हें दिख रहा है कि अरे इतनी टैन हो रखी हूँ, सूखी हुई लकड़ी की तरह लग रही हूँ, कोई कपड़े अच्छे नहीं लग रहे. एंड सडनली अनिल कपूर इज टेलिंग यू दैट ओ यू आर सो प्रिटी. सो या दैट वो उनकी बड़प्पन है, उनका बड़प्पन है. उनकी
0: लड़की को देखा तो ऐसा लगा.
1: See, I was just telling her that you are perfect for bigger radio stations as well. See.
0: अच्छा, अभी वो सोनी से बढ़ते आगे. सो व्हाट वाज योर नेक्स्ट शो व्हेन यू स्विच ऑन, बिकॉज यू मस्ट बी ट्राइंग योर एंड देयर.
1: ओह माय गॉड. सो बेसिकली आई आफ्टर दैट, तब तक मुझसे लोग पूछते थे कि आपने बॉम्बे में स्ट्रगल कैसा है. आई वाज लाइक स्ट्रगल तो कुछ होता ही नहीं है करके. मेरे पास कोई स्ट्रगल नहीं है भाई. तुम लोग कर रहे हो स्ट्रगल, तुम लोग सो रहे हो फुटपाथ पे. मैं तो
0: आई एम गिविंग ऑडिशंस एंड ऑल, गोइंग टू माडा एंड ऑल.
1: या तो मुझे तो पता ही नहीं था ये सर. मैं तो नई दिल्ली से आई थी. मतलब मैं 6 महीने रही बॉम्बे में और 6 महीने के बाद आई हैड दिस शो.
0: वाओ.
1: एंड इट वाज अ बिग शो. लाइक मैं उसके बाद कहीं पर भी जाती थी, पीपल यूज टू रिकॉग्नाइज मी, योर विजय निकॉन राइट, वी विल टेक अ पिक्चर विद यू एंड ऑल दैट. वाज अ वेरी बिग थिंग फॉर मी. 19 साल के बच्चे के लिए अचानक से ये सारी चीजें, जिसका बैकग्राउंड जिसके किसी पूर्वजों ने कभी नहीं देखा ऐसा होते हुए, तो उसके लिए तो इट वॉज अ वेरी बिग डील. सो या दैट्स व्हाट. उसके बाद मैं, मेरा जो स्ट्रगल शुरू हुआ उसके बाद शुरू हुआ, आई गेस अभी तक चल ही रहा है. उसके बाद अभी खत्म नहीं हुआ. सो आफ्टर दैट आई गॉट टू नो अ लॉट अबाउट दिस सिटी. स्ट्रगल स्टार्टेड बिकॉज लॉकडाउन हैपेंड, काम कम हो गया, उसके बाद पीपल वर ओनली टेकिंग पीपल जो लोग नोन है, क्योंकि नए लोगों पे पैसा इन्वेस्ट करने के लिए पैसा इंडस्ट्री के पास था नहीं.
0: अच्छा.
1: आज भी बन नहीं पा रहा है फॉर सम रीजन. सो हैड दीज काइंड ऑफ इश्यूज, बट गॉड हैज बीन काइंड टू मी. इन 2021 थोड़ा डगमगाया है. 22 में आई डिड फ्यू एड्स फॉर मैकडॉनल्ड्स, फॉर श्याम स्टील्स, फॉर मंगलदीप, अगरबत्ती एंड एवरीथिंग. सो ऑल दीज आई हैव डन. 2023 वॉज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ अगेन. आई रैंडमली गॉट अ कॉल फ्रॉम पर्सन, casting person. Then he said ki listen, you send me your pictures and I want you to, you know, just explore this ad world. Ye billboards Cadbury celebrations ka we are looking for. And let's see. I'm like okay cool, to maine bheja aur uske baad main bhool gayi. I actually forgot about this ki maine unse baat kari hai, main bhool gayi.
0: Cadbury's ko bhool gayi,
1: main bhool gayi, main bhej ke bhool chuki hu ki meri aisi koi baat bhi hui hai, warna
0: aaya. Yeah.
1: Childhood and my most favorite chocolate brand. Main aaj bhi pagal hu Cadbury ke piche, to Dairy Milk ke piche. To main wo photo bhej ke I forgot कि मैंने उनसे बात करी थी. यूजुअली मैं क्या करती हूँ, मेरा अगर ऑडिशन जाता है, मेरा कहीं कुछ जाता है, तो मैं एक हफ्ते डेढ़ हफ्ते बाद आई कॉल दैट पर्सन कि क्या अपडेट है, क्या है. मैं भूल गई. एंड वन फाइन सैटरडे आई वाज गोइंग टू जुहू बीच का, जुहू में जो शनि मंदिर है, महाकाल टेम्पल इस्कॉन. अच्छा. के सामने. सो एवरी सैटरडे आई गो देयर. तो मैं वहीं जा रही थी एंड आई वाज विद अ फ्रेंड ऑफ माइन. और मैंने उनको बोला कि देखना, बहुत ही जल्दी इस जुहू सर्कल में मेरा एक बिलबोर्ड होगा.
0: वाओ.
1: एंड आई जस्ट सेड इट.
0: ओके.
1: उसके बाद मैं मंदिर गई, मैंने पूजा करी और मैं वापस आ गई. और उस पूजा में भी मैंने बस इतना ही बोला कि आज मेरी जबान से ये निकला है तो इसे पूरा जरूर कर देना. विद इन 17 आवर्स देयर वाज अ कॉल दैट यू आर सिलेक्टेड फॉर दिस कैडबरी सेलिब्रेशन होल्ड. उसके चार दिन बाद मैं शूट पे गई हूँ. शूट पे वहां पे अलग अलग सिनारियोज में अलग अलग कास्ट के साथ 8 से 9 फोटो शूट्स हुए हैं. एंड माय फोटो शूट वाज द ओनली फोटो शूट व्हिच वाज इन पैन इंडिया. इस देश के हर शहर, हर कोने में, हर गांव में मेरा होर्डिंग लगा हुआ था. एंड वहां से हर जगह से मेरे पास वो फोटोज आ रही थी दैट वी जस्ट सॉ योर होर्डिंग. And the most incredible thing was जलसा हमारे श्री अमिताभ बच्चन जी के घर के सामने मेरा होर्डिंग लगा था. सो मी कमिंग फ्रॉम अ वेरी स्मॉल बैकग्राउंड, अमिताभ बच्चन हमने घर से निकलते हुए ये तो एक बार ही देख ही रहे होंगे वाला फीलिंग. आई क्राइड स्टैंडिंग देयर बिकॉज द हसल विच आई हैड, रिजेक्शन. एवरी डे वी गेट रिजेक्शन. दिन के 20 ऑडिशंस भेजते हैं, 20 के 20 रिजेक्ट होते हैं. नहीं मिला, नहीं है, किसी नोन को ले लिया, यू आर नॉट फिट फॉर द रोल, आप बहुत बड़े लग रहे हो, आप बहुत छोटे लग रहे हो, एवरीथिंग. मेरे साथ क्या, दीपिका पादुकोण के साथ हो रहा है, मैं कौन सी, मैं तो बहुत ही जमीन के लेवल पे हूं अभी. सो इतने हसल, 2 साल 3 साल कोई काम नहीं था, देवर survival issues happening. There were times in Bombay when I had no food to eat. I had no money to pay rent. I don't take money from my parents. उनको बता भी नहीं सकती कितनी problem हो रही है वरना वो चिंता करेंगे. So a lot of things happened. Faced so many things. I had dear friends in my life who helped me through this journey. And the day that hoarding came out, it was again, now see, it was 2nd November, Shah Rukh Khan's birthday.
0: Okay.
1: And somebody sent me a photo that, listen, your hoarding is out.
0: Okay.
1: I went there, I stood there for 1 hour straight, I was just looking at me and I was crying. I was howling. I was like, ki Bhagwan, aap sach mein ho. वरना ये नहीं हो सकता था कि मैंने बोला और उसके 15 घंटे के अंदर मेरे पास ये था और आज मैं दुनिया के, देश के हर जगह पे मुझे लोग देख रहे हैं. आई शो यू दिस. I get very excited when I talk about this because mujhe na chamatkar jaisa lagta hai. This
0: was wow.
1: This was my, and you see sabke chehre hain but my face is only visible in this hoarding.
0: Yeah.
1: So
0: lovely.
1: It was a very beautiful journey. Since 2023.
0: Oh, so you continued with ads and all.
1: I still do ads, but I am more into web series and movies.
0: Okay.
1: So after that, in 2023, I got selected for a show called Hai Junoon, which is live on Jio Hotstar now.
0: Okay.
1: It is with Neel Nitin Mukesh, Jacqueline, Sumedh, Priyank, Siddharth Nigam. There are many
0: starcast.
1: So it's a multi-star cast. There, Vaman Irani, Shankar Mahadevan, and our choreographer. What's his name?
0: Ganesh Acharya.
1: Shamak Dawar.
0: Oh,
1: all these people are there in the show. Bosco is there, so it's a big deal. Girl has been growing up a lot.
0: Yeah, and just you must be 22, 23, right?
1: I was 23. Yeah. I'm 2000 born, okay. So मेरा साल के हिसाब से चल रहा है मामला. So
0: बढ़िया चल रहा है.
1: So after that, like shoot started happening. It's a very small secondary role, but it was a debut. I am throughout the show.
0: Sure.
1: And I had such great experience talking about Neel Nitin Mukesh. He's a sweetheart. Pehli baar maine kisi aise kisi naam chin insaan ke saath kaam kara. 4 months we worked together. Aur wo 4 mahine main every day I used to be excited to meet him. Every day he was excited to meet me.
0: Oh,
1: he's getting food for me also from his house. Aaj dekh maine kya ghar pe kya laya hai. So now we don't meet regularly, but every Ganpati I go to his place.
0: Okay.
1: His dad, Nitin sir, so like such amazing people. Khandani log jo tameez jo cheeze rakhte hai, brilliant people. Jacqueline I didn't interact that much with, but Jacqueline is the sweetest actress you can actually work with. She's very easy to work. Main ye nahi karungi, main wo nahi karungi wali cheeze hai hi nahi unme. She's actually very smoothly going. सुनो ना आज इधर सेट पे पंखा नहीं लग सकता. अरे कोई बात नहीं, मैं पंखा मंगा लूंगी. शी इज लाइक दैट, शी इज वेरी स्वीट.
0: अच्छा, चलो वापस एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं. आप कॉफी भी पी लेना. चलो, और आप सुनते रहिएगा आचार्य 90 FM योर ओन रेडियो. वी हैव सेलिब्रिटी निकोन मुखर्जी विद अस टुडे.

0: After the short break, you're listening to Acharya 90 FM, your own radio, and our celebrity show today. We have invited celebrity Nikon Mukherjee. So, Nikon, what's up next? I would like to hear. Abhi aapne kaun se matlab kaun se field ko ye kiya use kiya?
1: Mera actually coming from a Bengali family again. हमारे actually ये visual arts में बहुत ज़्यादा ही घुसाया गया है हर चीज़ में. So I sing also. Little bit.
0: थोड़ी झलक हो जाए.
1: Not as good singer, but I will sing for you. तो है जुनून की जो बात चल रही थी अभी इस शो की, वहां पे उन लोगों ने सेट पे ये चीज एक्सप्लोर करी मेरे बारे में दैट आई सिंग. सो दे एक्चुअली गेव मी अपॉर्चुनिटी ऑफ सिंगिंग ऑन द शो एज वेल. सो मेरी आवाज जहां जहां है वहां मैंने ही खुद गाया है. दैट्स माई फर्स्ट प्ले बैक एवर.
0: ओके.
1: और सौभाग्य है मेरा दैट शंकर महादेवन जी का ब्रेथलेस रिक्रिएट हुआ इतने सालों बाद. एंड आई एम वन ऑफ द सिंगर्स इन ब्रेथलेस.
0: यस.
1: दिस कंट्रीज मोस्ट आइकॉनिक सॉन्ग
0: एंड द यंग वन.
1: या आई एम अ पार्ट ऑफ दैट
0: प्लेबैक सिंगर.
1: एंड इट इज जस्ट सरियल. मतलब मैंने सोचा नहीं था. मेरे को बहुत रैंडमली उनके बेटे सिद्धार्थ महादेवन ने कॉल किया एंड ही इज लाइक तू गालेगी. मैंने बोला सिद्धार्थ नहीं हो पाएगा क्योंकि आपके जो पिताजी हैं वो अभी ग्रैमी जीत कर आए हैं, हमसे नहीं हो पाएगा. इज लाइक तू कर लेगी चार लाइन में तू कर लेगी. सो आई एक्चुअली सैंग एंड बाय गॉड्स ग्रेस ऑन यूट्यूब दैट सॉन्ग हैज रीच्ड 26 मिलियन एंड ऑन स्पॉटिफाई इट्स 4.1 मिलियन राइट नाउ. सो या इट एक्चुअली बूस्टेड मी टू क्रिएट माई ओन कॉन्टेंट. एंड हैविंग सेड दैट मेरा जिंदगी का पहला सिंगल खसमानू खाने इज ऑन स्पॉटिफाई एंड बिकॉज ऑफ दिस होल ब्रेथलेस थिंग आई गॉट 4.6 lakh मंथली लिसनर्स ऑन स्पॉटिफाई. पीपल गेटिंग इन टच विद मी ऑन इंस्टाग्राम. माई इंस्टाग्राम डैशबोर्ड हैज रीच 1 million. सो अ लॉट ऑफ थिंग्स हैपेंड एंड विद इन 8 days खसमानू खाने जो मेरा पहला सिंगल है वो रिलीज होते ही रीच्ड अराउंड 10,000 स्ट्रीम्स 11,000 स्ट्रीम्स. सो पीपल लाइक्ड इट एज वेल एंड आई एम जस्ट ग्रेटफुल टू गॉड.
0: रियली इन सच अ शॉर्ट टाइम यू हैव अचीव्ड सो मेनी थिंग्स.
1: अभी तो बहुत बहुत ऊंचाइयों पे जाना
0: बाकी है. अभी दूर है लेकिन दिल्ली दूर नहीं है.
1: दिल्ली दूर है पर मुझे तो बॉम्बे दूर लग रहा है. दिल्ली तो पास है. वो दिन बाकी है जिस दिन मुझे शाहरुख खान अपने बर्थडे पे सेल्फ इन्विटेशन पे भेजेंगे कि यू नो प्लीज डू कम इट्स माय बर्थडे.
0: इट्स माय बर्थडे. वाओ.
1: दैट्स द ड्रीम. दैट्स द गोल.
0: या एंड विद गॉड ग्रेस यू अचीव वेरी सून.
1: देखो आज मैनिफेस्ट कर रही हूँ यहाँ पे बैठ के. अभी होने वाला है. अभी नेक्स्ट बर्थडे पे आई विल शो यू स्टोरीज डालूंगी. सो आई विल सिंग 2 lines ऑफ खसमानू खाने फॉर यू.
0: ओके थैंक यू सो मच.
1: मुझे जुकाम हो रखा है क्योंकि बॉम्बे का भी वेदर थोड़ा खराब है.
0: लेकिन दिल्ली जैसा पोल्यूशन नहीं है. थोड़ा कम है.
1: इसे दिल्ली में 326 AQI आए हैं और बॉम्बे में 226 AQI आए हैं.
0: थोड़ा इधर उधर चल.
1: मैं सच्ची आई लव मुंबई पर मैंने इट्स बीन 7

0: यस, मैंने 6 साल में कभी ऐसा पॉल्यूशन नहीं, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन मुंबई आई हैव सीन दिस मच.
1: अच्छा,
0: एंड दैट्स एक्चुअली वेरी शॉकिंग गाइज. इफ इट इज रीचिंग आउट टू यू, प्लीज डोंट पॉल्यूट दिस सिटी. दिस सिटी इज द मोस्ट ब्यूटिफुल सिटी. प्लीज, यस, रसवानू खाने.

0: दे आई गो टू द हुक स्ट्रेट खसमानू खाने करना बहाने क्या दिल में तेरे हम भी तो जाने देयर्स अ स्टेप डू विद मी खसमानू खाने डू इट वन टू थ्री गो खसमानू खाने करना बहाने क्या दिल में तेरे हम भी तो जाने दैट्स व्हाट इट इज
1: Thank God. So now what have you thought for future? As you said, you are looking for various opportunities.
0: Yes.
1: Still something is remaining. What are you looking for?
0: A Bollywood debut. जिसमें मैं स्विट्जरलैंड की वादियों में शिफॉन की साड़ी पहन के ऋतिक रोशन के साथ रोमांस कर रही हूँ दैट इज द गोल
1: गोल या
0: बट हैविंग सेड दैट अगेन इतना बड़ा डेब्यू तो नहीं हुआ है बट अगले साल 2026 5 जून अपने सिनेमा घरों में जाके मुझे जरूर देखिएगा आई एम डूइंग अ मूवी विद डेविड धवन एंड द स्टार कास्ट इन दैट इज वरुण धवन मृणाल ठाकुर पूजा हेगड़े एंड आई एम प्लेइंग अ रोल देयर एंड वेरी एक्साइटेड बिकॉज इट्स माय डेब्यू
1: सो वी आर आल्सो एक्साइटेड नाउ टू सी यू
0: इन द मूवीज
1: थैंक यू फॉर कमिंग हियर एंड जॉइनिंग अस फॉर आचार्य 90 FM आई एम गिविंग योर शॉर्ट इंटरव्यू And also coming as a judge also for our open mic.
0: Thank you so much. Thank you for having me. And it has been a great, great time with you. And please take my word seriously. Do it full-fledged. Mm-hmm. You are a very talented jock. Okay. Do it full-fledged. Yeah. And super excited to be a part of Pixel 2025 in NG Acharya.
1: And DK Marathi College.
0: Exactly. Itna bada bola nahi ja raha hai. You know, graduation nahi kari hai maine. But jokes apart.
1: Achieved, yeah. Achieved and your experiences. Experience always teaches you.
0: Theek hai.
1: Many things, yeah.
0: मेरे माँ बाप को पता था पढ़ाई वढ़ाई होने नहीं वाली है सो देवर कॉन्फिडेंट की जिंदगी में कुछ तो उखाड़ेगी
1: सब एनएसडी से नहीं होते ना सो वो तो ऐसे इनबॉर्न टैलेंट है कई लोग इनबॉर्न टैलेंटेड है जैसे निकॉन
0: जैसे हमारी जो मैम बैठी हुई है यहाँ पे थैंक यू सो मच
1: सी यू सून So in our celebrity show today, we had celebrity Nikon Mukherjee with us. So hope you like the show. Please do subscribe, like, share and subscribe our channel. That is Acharya 90 FM, your own.
0: I always Thank wanted you. To say this. Can I say this?
1: Yeah, sure.
0: If you like this video, please hit a like, share and subscribe the channel of
1: Acharya 90 FM.
0: Let's go.
2: Acharya.

0: नको घालू आ गई ये नशालू।
1: अरे दादा राजा अशलाड़ी गुड़ी न तुझा अबरूता वाजा बेंड बाजा बेंड बाजा बेंड बाजा आ

अपनी माँ की इकलौती बेटी और अपनी स्टेप डैड की पांचवी सेंटीज की सबसे खूबसूरत लड़की। The girl's got everything. The girl's got everything. The girl's got

सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला अरे कैसा सीधा साधा मैं कैसा भोला भाला जाने कौन घड़ी में पड़ गया पढ़े लिखे।

चोरी मिली छोरी तो मिली छोरी तो हुआ निहाल, छोरा गंगा किनारे वाला, ओ छोरा गंगा किनारे वाला, खई के पहन बनाओ रतु बाला, खुली जाए बंद अकल का।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: सबको सोम सरोवर बुला लिया, इकट्ठे रहेंगे। काम कितना बढ़ जाता है कोई हमसे पूछे।
1: ओहो, तुम क्यों परेशान होती हो भाई, ला मैं बनाता हूँ मिठाई।

0: कृष्णकांत जी,
1: बहू नहीं बेटी लेकर जा रहा हूं।
0: हरिश्चंद्र जी, जिस दिन सारे बेटों के बाप आप जैसे हो जाएंगे, उस दिन बेटियां किसी बाप के लिए बोझ नहीं कहलाएगी।

0: विशाल, मैंने बताया था उसको ऑर्किड नहीं पसंद.
1: रियली?
0: और केक?
1: फाइव मिनट्स, आई विल बी बैक.
0: अरे गाइस जल्दी करो, वो आने वाली है.